0: Liebe HFM, nur die Ecke Megahertz.
1: Regarding the Hegadekar minute mean what the Heke megahertz, Divi FM, Megadega Algun Mekuri, Migenda, Euntering a Hovon Shog, Miha Hisabungula, Lay for Mimani Dim. Slam Alekum?
2: Alekum Salah.
1: Kine Halu Dim?
2: Dangale Fahikini.
1: Hama Barabar Ki Kuraniti? Varangunda Gulumaka Daka and Fahing, he even.
2: No, me had me hooked if I would him.
1: Eh, him, my name, Barangalata, he be. Though Kunka Mekurani.
2: Hey, boot
1: the donut. Boot the doilani. Atun the doilani.
2: Ah, atun donut, guru.
1: Ehem vima, ti giha boot at the donani.
2: Okay, dead. Other boot.
1: Other boot, a bejay donut, no.
2: Ade, we come me a design another.
1: Ah, ehem money, ehem money.
2: Other me hung.
1: Atar mehunge boot me adu me ti du do de maade me ti ikene ta
2: ikene
1: ha ehenda eha hun vi adu
2: aa belkani banda ikene ikoda ko hikala baatan
1: machine hun hikala ni
2: aha kondo ela machine hun hikala ko den banda
1: aha kon ka me mi ha
2: erun hikela wala ritra no na sikhe ekam de maada ma hendu school ad dan wala no hiki dan ti
1: do kine vi yo iye ti kama nulu ni
2: ये तंग कोड़ा बिजी करने वालों ने हम लोगे नहीं
1: अहम बनिया वो बा कौन का में देंगे उन्ना नहीं मिया तो
2: देंगे
1: वासे ब्यूटी रेगन दियों तो रेगन टाइमिंग है बहुत है यादी
2: हाँ अंदर आ यादी कक्कम
1: यादी कक्कम विस जी है तो यादी थी कम उन्ने सलाम में भी मक्कम फिश है नहीं तो
2: आमे बोट तो इला हो बिहारे को सर्द दिन पक्का है, लेकिन एक्सीडेंट दोनों में नहीं
1: हुआ रहता। ऐहें तो है यार मिया तो वारा बिजी को ती दनी ये वैसे हाँ बिजी है ती बनी मिया दूसरे हाँ बिजी तो बिहार लिबे में
2: हुए नू है मस्त करते।
1: आस्तु से हैं मरने हम ती इच्छी दोनों समय दे दूस फोन अने का बाले दूस फूरे दो वशिगंड फूरे
2: दे दो मैं दो दोनों जे
1: हाँ हमें हैं मरने रंगलत थी बनी को पर रिक्वेस्ट को लाफ में अल्लाह वो बेनों ता हास को ला
2: पाहिया बेन अडवा
1: कुडी ओके शुक्रिया इंगे लव अगेन स्टेन

0: Movie Mood. Movie Mood. Movie Mood.
1: Assalamualaikum. Nodihe ke megahertz TV FM game me hai hun tere na varang ufa vare vara baajer vagut kola kange den. Mi vagut kola mi khas kola ne kome hafta ke salgun menge hun tere na hame movie mode Mrs. Silagi show the kun show ke ni sir madin kome hafta ko is alugun da ki ke mehmana ko baver ve mehmana kang em me kamda film ge wah ka mi show ge tere da kani mehmana kang e film me kamugus ke inge me var balalum ge kuda kuda testing alugun menge show ge tere ka kuri ke ndari mi hafta ka alugun na ki ke mi baver ve ni Zainab bang em me kamda film ge wah ka da kala mi adu mi e no Zainab Zainab movie mood mi show ke farat var marhaba inge
2: shukriya
1: Zainab the movie mood mi silsla ke show ta adu ahaf me ti baver ve fa show inge no anna ki ne vani dive fm ma ki ha ga e hun teri go to ga Zainab pane
2: hama fudera ka program to ga hin de tere ko baver ve dan de mi hin bun sar gin an no baver vani ki
1: baver va hin ti buna hin no e ha baddal ve handa ne no e Zainab ba ka inge program ta adu han do ek
2: baran hama adu ha
1: movie mood message la ga show ta adu ha ki ke hitan arani
2: ha de mole kora sawal ta
1: mizu kora sawal ta mole ti tangar mizu kora and mehmanu na film inge mi var vi sar ki ta ka na ra ta
2: ओह देवरा जवाब देने के खास वास पर फर्क करे दो हित विस नारा है वेगे एक तंगरा है हद मोले पूरा स्वाद
1: ओके हमी ज़ैनब वे समय ज़ैनब बंगे में खमदा फिल्म के वाहक दक्कालन तीने है असे नो किहा वर का फिल्म ता बाला फिल्म ता मी फाहोगे फिल्म ने कुंडा न्याय फिल्म ता बेलो मलोब कुरा मी है ज़ैनब बकी
2: देन हम एहन उडा वर हम बकुस्तो टेलीविजन बालन
1: अब दिस फिल्म बालन है मी बदो गोडा में बालन इंग्रेसी हिंदी नुनी बेरो बस पोगे फिल्म त तनुने अदिने फिल्म दत्त
2: गिना हिंदी फिल्म बिदने
1: ओके मी तो मे थी हम हिंदी फिल्म ति बुना हन नागा फविस्तो
2: हिंदी फिल्म में इन
1: हिंदी फिल्म त कोन फिल्म में मिनेगी
2: बदमाश कंपनी त कोले कोरिया के फिल्म है दो
1: बदमाश कंपनी नागा फ मे थी मी फिल्म गे एहम लावे को फुरता म फशा मा दो लावता इंगे त मे फिल्म गे ज़ैनब दे वर एक कला हेवी मेटल टाइप के लवा लवा दो मि हुन्नणी
2: असो लावता के फिल्म गे नो बदन हम ओला ली दे कम को फिलाने फिल्म गे इन आने गेंगुले फॉर इन स्टोरी आई जस्ट कम दिए
1: हिंगा हे फुरत म एकम फिल्म गे लावे तकुन लावे फुरत म हर में अडुई वाला नी हुन तेरे लवे सेनो ओके

0: ಮೆಗಡೀಗ ಅಳ್ಮಿನ್ ಕುರಿಯ ಮಿಗಿಂದ ಅಶೋಕ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬೋ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಾಣ ಅಳ್ಮಿನ್ ನಾ ಬ್ಯಾವಿರಿವಾಣ ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಾಯ್ ಹುಂ ತಿರೇಖ. ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಶೌಕೀನ್ ಹಾಲ್ ರಾಂಗಳು ದೆಂಗ್ ಏಹಾ ಎನ್ನು
1: ರಾಂಗಳು ದೆ
0: ಕೀನೆ ಬಾಲಿ ತಣಿಕ್ಕ
1: ನೋ ಬೈಯೆನ್ನು
0: ಬೈಯೆನ್ನು ಹೆಂಕಾವೆ ಮೇಳೆನೆ
1: ದೋ ಮುಳೇರದೋ
0: ಕಂಕನ್ ದಿಮಾ ವಾಣ್ಯಾ ಓಕೆ ತೀರ ಕಂಕಂ ಹಮ ಹಲ್ಲು ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿಕ ಮೈಂಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ವಿ ಹಾವೆ ಸವಹಕ
1: ಕಂಕನ್ ರಂಗಳು ದೆಂಗೋ
0: ಕಮೆ ಗೋಹಿ ದೋ
1: ಕಮೆ ಬಸ್ ಗೋಹೆನ ರಂಗಳು
0: ಆಹಾ ಓಕೆ ಮಸಲೆ ನೆಗೆ ದೆಂಗೆ ಮಿಯ ಕೆಂಗೆ ದೋ
1: ಅಡುವಾಲನಿ
0: ಅಡು ಇವೇ ಗೊತ್ತ
1: ಅಡು ಇವೇ ಗೊತ್ತ
0: ವರ ಫುರಿ ಹಮಂಗೆ ಎಂ ವಿ ಮತಿ ಬುರು ವರ ನೀ ದಿಕ್ಕು ಕೊ ದಾಣಿತ
1: ನೀ ಬುರು ದೇಂಕ ಹೆಂಗೋ ಫಸ್ಕಡಿ ಬಾವಂ ವಾರ ಕಂಡಂಗೆ ಮೀಮೆ ವರ ವಾಣಿ ದೋ ವಾಣಿ
0: ತಿಹಾ ವರ ದುವನ್ಯ ಕಿಹಾ ವರ ಕ ಪೆಟ್ರೋ ದಳಂ ಜೆ
1: ಪೆಟ್ರೋ ದೋ ಉಣಗಣೋ
0: ಉಣಗಣೋ ಆ ತಿಹೆಂ ಇಂದೇವೇ ಕಂದೋ ಗೊತ್ತಕ್ಕದಣಿದೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಲ್ಲ ಸಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಓಹೊಂದೆಂಗೆ ಮೀ ಆಮಕ್ಕೊ ಮೀ ಹುಣ್ಣಾಕಿ ಉಳೇರು ನುವಾ ಕಂಕಂ ಹುಣ್ಣಿ ಏಕನಿ ಉಳೇರು ವಾಣೆ ಗಿನ ಫಹರ ನುವೇದೋ ಓಕೆ ದೆಂಗ್ ಸ್ಯಾ ಬೈಫ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಕೊಂಗಿರಕ್ಕು ಸ್ಯಾ ನುಬೈತಿ ಉಳಿದೋ ತಿಬುಣಿ ಅದು ಇನ್ವಸ್ ಕಾಣಿ ಎಗ್ಗುತ್ತಕ ಅಸ್ಮಿ ಅದು ತೀಯತಿ ವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಮ ಕಾಫಿ ಎಬ್ಬೋಲಮ್ಮ
1: ಎಂತ
0: ಮಿಯಾರು ಹುರೇನು ಟೇಕವೇ ಕಾಫಿ ವಿಸ್ ಎಮ್ಮೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಣ್ಣರ ದೆಂಗ್ ಅರತೆ ಕೂತ ವ್ಯತಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ದೆಂ ಬಿಜೆ ಹೊಣಿ ಅರಿಯ ತೊಳು ಉತ್ತುರುಬುರಿ ಎಮ್ಮೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಣ್ಣ ಎಕ ಹೆರಿ
1: ಓಕೆ ಹಮೇ ಕಿನ ಸೀ ಪ್ಲೇನ್ ಜಸ್ತಾರ
0: ಏ ತಿಕಾಲ್ ಮೌಲು ಮೌಲು ಮಾತೆ ಹೈ ನುಯ್ ಹುರಿ ಅರಿಯ ತೊಳು ಉತ್ತುರುಬುರಿ ಉತ್ತುರುಬುರಿ ಅಳೆ ದೆ ಬುಣಿಯಾ ಕಿ ಹಾ ಫಸೆ ಏಕಂ ಬಿಹಾರ ಮೇ ಸರ್ಚ್ ಜಹಾನ್ ಇಂಗೆ ಫೆನೆ ತೋ ಹಿಂಗಾವ ಬಲಂ
1: ಏ ಕುರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮೊಳೆ ನುಯನ್ನ ಅಸೆ ವಾಹಕ ಪಣವಗೆ ಮೇ ಗುಳಿ ಇಂಗ ಪಿಪಿ ಕೋಳ
0: ಮೊಳೆ ನ್ಯಾ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಬೈಯೆವಸ್ ನುಯೆ ನುಂತ
1: ಏಕಂ ಕೋ ಮೊಳೆ ನುಾನೆ
0: ದೋ ಬುಣಿ ಬೈಯೆವಸ್ ನುಯೆ ನು
1: ಏ ನು ನುಾನೆ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಕ ಗೋಲೆ ನುಜಿಹೆನೆ
0: ಆ
1: ಕನ್ ವಜ್ಯಸ್ ತೋ
0: ಕೋಪತ ಮಸ್ಸಲೆ ಕಿ ಮೇ ಹರ್ದೆಂ ಏ ವರಬಡು ಬಹುಸೆದೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಎಲ್ಲಾಂಡ್ರು ನುಜಿಹಣಿ ಮಿಹೆಂವೆಗೆನೆ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಬಲಿಯೇ ನೋಣಿಯಾ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಬೋಳ ಏನಿಗೆ ಫಯಾ ಹಬೆ ನುದಿಯೇ ಏಕೆ ವಾಹಕ ತೆಗೆ ಬದಕ್ಕಾತ ಮಿಹಾರ್ ಶಹೂಬು ನಾಣಿ ಕೀಕೆ
1: ಬೋಳ
0: ফুটবল এঙ্গে মি হুনে এঙ্গে আসলু মি খালওয়াকে দেখকে নি দো মিয়া রে নে তা
1: হ্যাঁ বল হোদাক মসকতে হামানো পুরে একো দে গবে সামাদে কাল আহার মে মি কুলেরু সুন্নানে দেন এককাল এমে ফালাকো এমে নদুয়েবে মিহা হুনানে এমে কুরিয়া লাদে এনা মে তা হুনানি
0: মড় কো বতি হেং হাম মিহা কু বুনা ইরা খাম বুনে মে সি এবেস নদুয়ে মি সি সাম হুননি এনে লিবেচে কে ফ্যাঙ্গোস জাহানি
1: কুরেন্দা গুলি মিয়া গুনি ফাইন সার্ভিস বোলে দো জে হুনি রোনাল্ডো ফাগা
0: ইয়া বনি হে
1: আমা এগো তো আমা কমেন্ট দে মিহা এ না গে নাং কি আনে ফুরসতে বসু দিবে
0: আল্লাহু আকবার
1: এনে কমেন্ট কত কোন নাম কি আনি দো দো আনে সে তো দেন কমেন্ট দে এবে সরে কা নি ওই দা মনি রোনাল্ডো এ কুলেন আরুয়া হে ওরি দো টিভি ফেনার দে মুলি আনেকতে দক্কার হে বড়ক ফাহগে নোবে বোলা নলিবে টিকান্নেগে দক্কায় বেসনুলে
0: আদেঙ্গে একি নোস তকুনা একি টিভি তকুনা একি কমেন্ট্রি দেমে একি গগতং হাম ওয়াহকে দেকে দে আশ দেমে গবুল করেউন একচে কি হাম টিম কাডাইয়ে হাম টিম আং এবারে গা নুকুরে মুনিয়ে এই দেঙ্গ আশ দে গবুল করেউনু কই
1: কা টিদো দেরো নারো এপড মিন্নানি দে আমা হুরে পাগে নে হাম এরিয়া তরে ওয়ান হুরে বলক ল্যান দিনি মা কি নে বগে ল্যান দিনি দে এগো তো তো এসর উন্নানি সামাকুনু দে এবরে বড় মা তে কে করন জে
0: বাইনা আ দে মি বাই মি হুমুনে নে মি ফুটবল নো সেঙ্গে মি হুনে আহাকে দেখকেনি দে এহেমি মাস দা এচে কে নুবনে হুন্নানি হাম বিয়ান হানু ইঙ্গে এহেমি মা হানু হুরে ফাহিঙ্গা বলাবেন আডু হালমা কল্লাবে গেনে
1: দে সাচি কো গেন রাশন নুফেনন দো
0: এ হিসাব হুটালে ইয়ে রোনাল্ডো ওয়াহক ফেশিমা এহেন নুমানি এহেন ওয়াহকে ফাশাফ বিয়া দো উলি গমত
1: উলি গমে রাজে গে মে উতুর
0: আ দো এ মার মাকিং উন্নে রশে বিয়া
1: নি মেদু রাজে তেরে আরি এতল উতুর বুরি গে মানে কি
0: আরি এতল উতুর বুরি গে মি মাকিং উন্নলা রা এহেন জে মান্ডম ওয়ানে দে একম তিবুনি গত জে মাই এহনে আর ইয়া তলু সুরবুরি আলিফ আলিফ আতলু গা ওই এম মে বড় রশকি আলিফ আলিফ রাস্তুয়ে মি ইয়া তলু গে ভেরি কাঙ্কুরা আর আবেস মে
1: ভেরি কাঙ্কুরা রশ এ কোন নিতে গে যা ভেঙ্গো দে টিম আসল কোট
0: লাও কাচি এ গুগল বুনাই চে মি গে বাই ফার মি আনে রাজে গে বাই মালুমাত নে গে গুগল লক দো
1: গুগল বাকি বার কান্ন তে নে রাস্তু রাস্তু বারো গে হারাম বারো আন কানে মিরা
0: তিরা দে বুনে বলালে
1: তোড্ডু
0: ಥೊಡ್ಡು ಎಹೆಂತ ವಣಿ ಓಕೆ ಮಸಲೇನೆ
1: ನಾನಂದೋ
0: ದಿಯ ಎಹ ಗಿನದು ಹಕಣ್ಣು ಇಂಗೆ ಹತರು ವರಕದ್ದು ಹದ್ದಿ ತಂಗೊಳೆ ಕುರಿಂಗೆ ಮಿಹದ್ದೆ ಬರಬಿಟ್ಟು ತಫಾತಸ್ ವಾಣಿ
1: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಬಿಡ್ದಾನ ಕಿಹಾ ಇರಕ ವೈ

0: Sua?
1: Oi.
0: ने यार बाह की ने दे में इंगे ए बाह की मूने तीनों फेन्ना कर ने दे में एक ही ने बेनों को फमे होती।

0: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो।
2: और मैं तफसील में हफ्ता का मैं बलाली दे ट्रेलर की गिलन दिवे ही उफेद में कमवा दें एम में अवह ओलिंपस सिनेमा नुकुतमा हम जेफवा फिल्म गिलन के ट्रेलर आदि अल्फा बी फिल्म के ट्रेलर के मच्चा गिलन ओलिंपा अंगनानी जून माह के तीरी होगा आदि अल्फा मुली दुनिया की सिनेमा तक रिलीज कुरानी चुले माह के तीन एक में हफ्ता का रिलीज भी इतरो बाइंग एहन ट्रेलर तक टीजर तक बलायर में हुकुर तो रिलीज वा पिक्सा के टॉय स्टोरी फहें स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन हाथरी के फुरी हम ट्रेलर श्रेक फाहे के फुरतम टीजर आदि डिज्नी के हेक्स के फुरतम फिल्म विसीमेने एनिमेशन आदि साइंस फिक्शन शौक वेरवा बेफुना मी बलाला रंगल उफेदुन तके एहमति बेफुन आदि बाला नुलाकम वाणमा मी ट्रेलर त बलाला यूट्यूब उम वर फसे हम फिन्नानी इतुर बैथक दियुम के कुरिंग अनिका विसम रीति लावे मिकेनेस्तेनी

0: ام نفس
1: من فوق في لونك دائرة ام تازة.
2: निम्मा आलूंगे कोरिंग तंकोले आवास बुरेंगे तो माँ बड़ा विष्णा अर्ने कमेंट हम कुरु कुरु जवाब तक देते हैं बंबे तो फर्स्ट सवाल लेंगे अरुण कोल्ला ना मैं अम्चे डायरेक्ट कोरी हुरी हाँ मैं फिल्म तो के तेरे एम मे फेवरेट फिल्म आ की को बातो दिवे फिल्म इदायरा का मिहाते ना मासे के नुकुरे वे अम्चे अंग दे मासे के नुकुरे वे एक हम को वारा मासे के को लंबे नु वातारी की को बातो
3: सिरानी
2: ए फिल्म डायरेक्टर की आहारे ना मैं ही तंगरा फिल्म की को बातो बेरो नमवेस दिवे ही फिल्म तर नमवेस
3: दिवे हिंगे फिल्म में दत्ता बनाम वाले मिकाल दिवे ही प्रोग्राम की तरह अर्गना ही तंगरा अर्गना यूसुफ हदा दें दिवे उन्ना में
2: तेंग आम जेग मैं फिल्म तो होगे तेरे वाले की ना फिर ने बीरवेरी फिल्म देन ड्रामा फिल्म इतनो कॉमेस एक जोन रह नगन जे जे कौन जोन रह तो नंगा
3: अर्गन मेरा नगा ही बड़ी हम आने आधा के दो बी तिनस्कन दो बी के ड्रामा ये तो
2: फंसास वन फिल्म गिलन मी फिल्म की मी फिल्म फह देन इतर मसे कते कोम मसे कते तो
3: बिहार विदनी वाहके मरियम मूसा के वाहके का तैयार हो ये तो देन आदि एगा अर्गन मुड़ी नामे आदि अहिया देन अनेक खंडे नाला एमवी मिहारे वाहक है स्क्रिप्ट अलवन में हदागे एदित एबरन तफात वाहक एक वाहक
2: हमारा फुरी होंगे तो निमाम के कुरिंग मी तंगरेनी हमाम जे की फिल्मी दायराग मी फिल्म ता उफदा ड्रामा ता उफदा हम एम में दोसी एक फरे एम में तजुर्बा करे फरे दे मिहार वरन आ कुदिन वेसे बनी कुमे मी दायरा दे तो एकुदिन की के तो मी मैसेजिंग बे तो
3: तेम बेनवा मिस्टेक की एवस काम का दूनो दिच्चे हिवर कुर बच्चे दूनो दी हिवर कुर को में मीये का मसे कद कामयाब वाने
2: वर बड़ा शुक्रिया एंगे तो
3: शुक्रिया
2: Amjad Ibrahim ade amjege fa kolave filmi hayatu ke mi kamyabi ataka hituge adin marhaba dannawang mi hisapun shoga mi genestelave ki filmo gilange theme lava